0: धीमि तथा कझम तथा कझनु तक ध्रुगुता तत तझनु की टता का
1: दृग धीनी ता धीनी ता धीनी ता धीनी